वेल स्वीट लिसनर्स, एक मरतबा फिर मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ FM 94 रेडियो दिलवर स्वाबी से। बहुत बहुत शुक्रिया FM 94 रेडियो दिलवर स्वाबी सुनने का। अच्छा लिसनर्स, तो मैं कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि रेडियो और रेडियो के साथ जुड़े लिसनर्स का मतलब एक आरजे के लिए। अच्छा कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर रेडियो में ऐसा क्या है कि एक ऐसी आवाज जिसका चेहरा आपने शायद कभी देखा भी नहीं ऐसे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। आप अपने काम में मसरूफ होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, रास्ते में सफर कर रहे होते हैं, शाम ढल रही होती है या रात की खामोशी आपके इर्द गिर्द फैल रही होती है और अचानक रेडियो पर एक मानूस आवाज आती है तो दिल कहते हैं अच्छा ये आवाज आ गई है। शायद यही रेडियो की सबसे खूबसूरत मोहब्बत है। यहाँ चेहरे नहीं में होते, यहाँ चेहरे नहीं होते, मुलाकातें नहीं होती, हाथ नहीं मिलते, मगर आवाजें ताल्लुक बना लेती हैं। एक ऐसा ताल्लुक जिसे किसी तारीफ, किसी नाम या किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती। बस एक आवाज होती है, दूसरी तरफ कोई सुनने वाला होता है और दोनों के दरमियान एक खामोश सा एहसास जन्म लेता है। स्वीट लिसनर्स, कभी आप लोगों ने गौर किया है कि हम कुछ आवाजों को क्यों याद रखते हैं? क्यों किसी एक आरजे की आवाज सुनकर दिल को सुकून मिलता है? क्यों किसी खास प्रोग्राम का वक्त करीब आते ही इंसान खुद ब खुद जो है ना रेडियो की तरफ मुतवज्जे हो जाता है? शायद इसलिए कि आवाज सिर्फ आवाज नहीं रहती, आवाज के साथ वक्त जुड़ जाता है, कैफियत जुड़ जाती है, यादें जुड़ जाती हैं। अगर आपने किसी आवाज को अपनी खुशी के वक्त सुना हो तो वो आवाज खुशी की याद बन जाती है। अगर किसी उदास शाम में वही आवाज आपके साथ रही तो वो आपकी आवाज आवाज के साथ जो है ना तो वो आवाज तन्हाई का साथी बन जाती है। और अगर किसी मुश्किल वक्त में किसी मेजबान के अल्फाज आपको चंद लम्हों के लिए मुस्कुराने पर मजबूर कर दें तो फिर वो आवाज आपके लिए सिर्फ रेडियो की आवाज नहीं रहती, वो एक एहसास बन जाती है, एक करीबी एहसास बन जाती है। और शायद यही वजह है कि लिसनर और आरजे के दरमियान जो ताल्लुक बनता है वो अजीब है और खूबसूरत भी है। लिसनर्स शायद जो है ना मेजबान के बारे में बहुत कुछ ना जानते हों, लेकिन मेजबान की आवाज के उतार चढ़ाव से उसके दिन की कैफियत बदल सकती है। दूसरी तरफ आरजे भी अपने सामीन के साथ ही अपने सामने बैठे हुए हजारों चेहरों को नहीं देख रहा होता, मगर उसे मालूम होता है कि इस वक्त कहीं कोई गाड़ी में बैठा सुन रहा होगा, कोई नौजवान अपनी रात के सफर में सुन रहा होगा, दिन की भागदौड़ में सुन रहा होगा, कहीं कोई घर में खामोशी से बैठा, कहीं कोई काम करते हुए हमारी बातें सुन रहा होगा, और कहीं कोई शायद ऐसा शख्स भी है जो सिर्फ इसलिए रेडियो खोलता है कि उसे एक एहसास भरी आवाज मिल जाए।

आप लोगों की टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं जी 09382804595। कभी कभी मोहब्बत किसी शख्स के पास बैठने का नाम नहीं होती, कभी मोहब्बत सिर्फ इतना जान लेने का नाम होती है कि दुनिया के किस कोने में कोई ऐसा शख्स है जिसका ख्याल आते ही दिल की रफ्तार जरा सी बदल जाती है, कोई ऐसा जिससे बात न भी हो तो दिल उससे बातें करता रहता है, जिसे देखे बगैर भी आंखें उसे ढूंढती हैं, जिसका नाम जबान पर ना आए मगर ख्याल के रास्ते से बार बार दिल में उतरता रहे। अजीब बात है ना, इंसान हजारों लोगों के दरमियान रह सकता है, हंस सकता है, बातें कर सकता है, अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजार सकता है, मगर दिल के अंदर किसी एक शख्स की कमी फिर भी अपनी जगह कायम रहती है। और याद रखिएगा लिसनर्स के, कभी कभी दिल चाहता है कि बस कोई सामने बैठा हो, कुछ ना पूछे, कुछ ना समझे, सिर्फ खामोशी से साथ बैठा रहे, क्योंकि हर दर्द अल्फाज के मोहताज नहीं होते। कुछ उदासियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें बयान करते हुए इंसान खुद थक जाता है।

कुछ उदासियां कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं। और ये याद रखिएगा कि मोहब्बत का सबसे खूबसूरत लम्हा शायद वो नहीं होता जब आप किसी के सामने खुद को छुपाना छोड़ देते हैं। आपको अच्छा दिखाई देने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, हर वक्त मुस्कुराने की जरूरत नहीं होती, अपने दुख को खूबसूरत अल्फाज में सजाना नहीं पड़ता। आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं, कभी खामोश कभी परेशान कभी बेवजह खुश और कभी थोड़े से टूटे हुए, और सामने वाला फिर भी आपको कबूल करता है। शायद इसी एहसास को मेरे ख्याल में सुकून कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में रख नहीं पाते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं।

याद रखिए कि लिसनर्स के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में रख नहीं पाते मगर अपने दिल से निकाल भी नहीं पाते। वक्त उन्हें हमसे दूर ले जाते हैं, हालात रास्ते बदल देते हैं, मसरूफियात दरमियान में आ जाती हैं मगर दिल के किस कोने में उनके लिए एक चराग जलता रहता है, ना उसे बुझने की कोशिश होती है। ना उसे रोशन करने की कोई जिद, बस वो अपनी जगह जलता रहता है, कभी मध्यम कभी तेज, कभी आंखों में नमी नमी बनकर, कभी होंठों पर एक बेइख्तियार मुस्कुराहट बनकर, और कभी किसी की याद इतनी करीब महसूस होती है कि इंसान बेइख्तियार सोचता है कि अगर वो अभी सामने आ जाए तो क्या कहूंगा। शायद कभी कुछ नहीं, शायद सिर्फ देखता रहूंगा, क्योंकि कुछ मुलाकातों के लिए जुमले बहुत छोटे पड़ जाते हैं। याद रखिएगा कि कुछ मुलाकातों के लिए जुमले बड़े छोटे पड़ जाते हैं। परसों की दूरी, सैकड़ों यादें और हजारों अनकही बातें एक लम्हे में आंखों के सामने आ जाती हैं, और फिर शायद सिर्फ इतना कहना काफी हो। तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें बुलाने की कोशिश तो बहुत की थी मगर दिल ने कभी इजाजत नहीं दी। और कभी कभी हम किसी शख्स को याद नहीं कर रहे होते, हम अपने उस वक्त को जो है ना याद कर रहे होते हैं जब हम उसके साथ खुद को ज्यादा मुकम्मल महसूस करते थे। हमें सिर्फ जो है ना वो इंसान नहीं याद आता, हमें अपनी वो हंसी याद आती है, वो बेफिक्री याद आती है, वो इंतजार याद आता है, या वो मतलब जो है ना छोटी छोटी खुशियां याद आती हैं जिन्हें उस वक्त मामूली समझा था। फिर वक्त हमें सिखाता है कि कुछ लम्हे जब गुजर जाते हैं तो उनकी कीमत तब समझ आती है जब उन्हें दोबारा खरीदने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है, पूरी लाइफ पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। और दर्द की भी अपनी एक खामोश जुबान होती है, हर दर्द आंसू नहीं बनता, कुछ दर्द इंसान के लहजे में उतर जाते हैं, कुछ उसकी खामोशी में, कुछ उसकी आदतों में। कोई शख्स पहले बहुत बातें करता था, अब खामोश रहता है, कोई हर बात पर हंस देता है, अब मुस्कुराने से पहले जो ना सोचता है, कोई रात देर तक जागता है मगर किसी को बताया नहीं जा सकता, किसी से कहा नहीं जा सकता, किसी को बताया नहीं जा सकता। याद रखिए कि लिसनर्स के ये बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि मोहब्बत में सबसे ज्यादा तकलीफ शायद जो है ना इंतजार नहीं देता बल्कि ये यकीन देता है कि शायद अब इंतजार का कोई मतलब नहीं। फिर भी इंसान इंतजार करता है, फोन नहीं आता, फिर भी फोन देखता है, पैगाम नहीं आता, फिर भी स्क्रीन रोशन होने पर जो है ना एक लम्हे को रुक जाता है, कोई पूछता है तो कहता है नहीं किसी के इंतजार नहीं, मगर दिल जानता है कि बस इंतजार इंसान दूसरे से नहीं खुद से छुपाता है। और कभी कभी इंसान को किसी की वापसी नहीं चाहिए होती, सिर्फ एक जवाब चाहिए होता है।

0: बैठे हैं।
1: और कभी भी इंसान को किसी की वापसी नहीं चाहिए होती, सिर्फ एक जवाब चाहिए होता है, ये जानना होता है कि जो कुछ महसूस किया था वो सिर्फ मेरी तरफ से था या कभी तुमने भी महसूस किया था।
0: मौत का
1: क्या कभी मेरी कमी ने
0: नहीं।
1: या कभी मेरी कमी तुम्हें भी महसूस हुई है? क्या कभी किसी शाम में तुम्हें भी मेरी याद आई है? क्या कभी तुमने भी किसी गाने के दरमियान अचानक मुझे सोचा? शायद इन सवालों के जवाब कभी ना मिले, मगर दिल फिर भी इन्हें अपने अंदर लिए फिरता है।
0: क्या करूं, दम निकलता नहीं है।
1: और ये याद रखिएगा लिसनर्स कि कुछ मोहब्बतें बहुत शोर करती हैं, या कुछ मोहब्बतें बहुत शोर से शुरू होती हैं और खामोशी में खत्म हो जाती हैं, मगर कुछ मोहब्बतें खामोशी से शुरू होती हैं और पूरी जिंदगी इंसान के अंदर घूमते रहते हैं। ना कोई वादा, ना कोई ऐलान, ना कोई बड़े दावे, बस एक एहसास जो वक्त के साथ कम होने के बजाय और गहरा होता चल जाता है। और अगर कभी आपको लगे कि आप जिस चाहते हैं वो आपकी कदर नहीं करता, तो अपने दिल को ये याद दिलाइए कि आपकी मोहब्बत की कीमत किसी दूसरे इंसान के रवैये से तय नहीं होती। आपने सच्चे दिल से चाहा, यही आपकी खूबसूरती है। किसी ने समझा या नहीं समझा, किसी ने साथ दिया या नहीं दिया, किसी ने आपकी खामोशी पढ़ी या ना पढ़ी, आपके एहसास की सच्चाई अपनी जगह कायम रहती है। और मैंने जैसे एक बात कही लिसनर्स कि कुछ उदासियां ऐसी होती हैं जिन्हें बयान करते हुए इंसान खुद थक जाता है, इसलिए नहीं कि कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए कि कहने को बहुत कुछ होता है। इतना कुछ कि इंसान समझ नहीं पाता कि कहां से शुरू करे और कहां खत्म। फिर एक वक्त आता है जब इंसान की जुबान खामोश हो जाती है और दिल कहता है रहने दो, जिसे समझना था वो समझ गया होगा और जिसे नहीं समझना था उसे हजार लफ्ज भी नहीं समझाए जा सकते। कभी कभी इंसान किसी के सामने बैठकर अपनी पूरी कहानी सुनाना चाहता है, मगर फिर अचानक रुक जाता है, अचानक खामोश हो जाता है, सोचता है क्या फायदा, क्या वो मेरी खामोश रातों को समझ पाएगा, क्या वो उन लम्हों को महसूस कर पाएगा जब मैं सबके दरमियान हंसता रहा और अंदर से टूटता रहा, क्या वो जान पाएगा कि कितनी मर्तबा मैंने फोन उठाया, किसी का नाम देखा, फिर बगैर कुछ कहे वापस रख दिया। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनकी पूरी हकीकत सिर्फ वो शख्स जानता है जिसने उन्हें अपने अंदर झेला हो, अपने अंदर महसूस किया हो। और कभी कभी उदासी किसी खास वक्फे की वजह नहीं होती, किसी खास वक्फे की वजह नहीं होती। लेसन्स मैं कहना चाहूंगा लेसन्स यहां पे कि

रखा हुआ होता है, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही होती है, लोग अपनी अपनी मसरूफियत में मौजूद होते हैं, सब कुछ बजाय ठीक होता है, मगर अंदर कहीं एक खामोश सखला मौजूद रहता है। आप खुद से पूछते हैं कि आखिर कमी किस चीज की है और जवाब नहीं मिलता, शायद किसी शख्स की, शायद किसी गुजरे हुए वक्त की, शायद उस सुकून की जो कभी जिंदगी में हुआ करता था। कुछ लोग अपनी

दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होते हैं, ये याद रखिएगा। हालांकि ये दो लफ्ज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि इंसान अपने दुख का आदि भी हो जाता है, फिर उसे किसी से शिकायत नहीं रहती, किसी से वजाहत नहीं चाहिए होती, बस वो अपने दिल के साथ रहना सीख लेते हैं। रात को खामोशी में कुछ यादें आती हैं, दिल को थोड़ा भारी कर जाती हैं, दिल थोड़ा सा भारी होता है, आंखें शायद नम भी हो जाएं, फिर इंसान पानी पीता है, चेहरा साफ करता है और अगली सुबह ऐसे उठता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कभी कभी हम किसी शख्स को ये नहीं देखें कभी कभी हम किसी शख्स को ये नहीं अपने उस रूह को याद करते हैं जो उसके साथ हुआ करता था। वो इंसान जो बेफिक्री में हंसा करता था, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाया करता था, किसी के एक पैगाम से पूरा दिन खूबसूरत समझ लेता था। फिर हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं और इंसान खुद भी बदल जाता है। बाहर से वही चेहरा होता है मगर अंदर का इंसान कहीं ज्यादा खामोश हो चुका होता है।

और ये याद रखिएगा कि कुछ दर्दों के साथ इंसान कैसे जीना सीख जाता है, कुछ दर्दों के साथ इंसान जीना कैसे सीख लेते हैं, शायद जो है ना इसके लिए वक्त दर्द को खत्म नहीं करता, बस इंसान को उसके साथ चलना सिखा देते हैं। शुरू में जो है ना हरिया छुपी होती है, छुपी रहती है, हर खामोशी सवाल बन जाती है, हर शाम बारी लगती है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान समझने लगते है, इंसान की समझ में एक बात आ जाती है कि हर जख्म को भरने के लिए मरहम जरूरी नहीं होता, कुछ जख्म वक्त की खामोश उंगलियों से खुद ही मदम भर जाते हैं। निशान रह जाता है मगर तकलीफ की शिद्दत कम हो जाती है। इंसान भूलता नहीं है, बस याद आने पर पहले जैसा टूटता नहीं है। और शायद यही जिंदगी का सबसे अजीब अजब किस्म का जो है ना एक सबक है। जिस शख्स के बगैर एक दिन गुजारना मुश्किल

0: back. Right after the commercial break.
1: कामयाबी की नई मंजिल की तरफ पहला कदम उठाएं। कायद आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में FSC फर्स्ट ईयर में दाखिले और रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में अभी दाखिला हासिल करें। जदीद क्लासरूम्स, तजुर्बाकार असातिज़ा, बेहतरीन तालीमी माहौल और शानदार नतीजे के साथ हम आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरअज़म हैं। हमारे कैंपसेस मौजूद हैं शमसी रोड मर्दान, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, हकीमाबाद नौशहरा, सवाबी, जैदा और मैनी चौक कोठा। आज ही अपने करीबी कैंपस का विजिट करें और दाखिला यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और दाखिले के लिए हेड ऑफिस के नंबर 09382801030 पर राबता करें। कायद-ए-आज़म ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जहां तालीम बनती है कामयाबी की जमानत।

हुआ चार्सद वालों पता नंबर अब्बास फ्रॉम चार्सद नन चार्सद वालों गटली दखा जकट सेकंड नंबर अवतर नंबर नंद चार्सदीन कालर दी हाँ कबिया गुरु न फर्स्ट नंबर बने सिंपल गरल द सवाबे रागली बहरा नंद चार्सद वालों नंद सवाबी वालों दगा मुकाबला बराबर अशोले जग चल तब फर्स्ट नंबर बने सिंपल गरल रागली दा और ब्याप सेकंड ना पतर नंबर बने उमर द सदीक द चार्सदी रागले और ब्याप पतर नंबर आबास द चार्सदी रागले मुद सवाबी वालों द चार्सद वालों जमा द दगा द्रियो बजू प्रोग्राम ची कम मुकाबला हुआ अगा बिल्कुल बराबर अशी विद जी तीसरा राहत मंदनी रागली वेलकम राहत सीमा गुल फ्रॉम स्वाबी हाय सीमा खुशी एंड चांदी मलकान दरगेना वेलकम खुशी चांदी थैंक यू उचाला बिलास्त चार सदी रागले मुद स्वाबी वालों द चार सदी वालों जमा द दगा द्रियो बजू प्रोग्राम ची कम मुकाबला हुआ अगा बिल्कुल बराबर अशी विद जी तीसरा राहत

सरा उसहा चमता कल कला सफयात के जमा उसहा चमता कल कला सफयात के जमा खबर को

0: right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड, होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।